0: और आइए आप सुने लता मंगेशकर की आवाज में तुलसीदास की पारंपरिक भक्ति रचना।
1: ज्ञान के बिना कर्म क्लेशमय हो जाता है और कर्म के बिना ज्ञान बांझ रह जाता है। भक्ति का उदय होते ही ज्ञान और कर्म अपने आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, पर इस भक्ति का उदय हो कैसे? भजमन श्री रामचंद्र।

0: अब हम आपको सुनवाते हैं गोपाल शर्मा और सुखदेव कुमार की आवाज में तुलसीदास की रचना मेरो भलो कियो राम।
1: ज्ञान, कर्म और भक्ति, जब इन तीनों का संगम होता है तब जीव का ब्रह्म राम से मिलन होता है, उसमें वो एकाकार हो जाता है।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का डीटीएच चैनल रागम। आप सुन रहे थे भक्ति संगीत। यह आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी।

जननी जाह्नवी जगत्रय पावनी हाड़िदारे बीआर गीता मत्तु मालती शर्मा जननी जाह्नवी जगत्रय पावनी संग बाय बीआर गीता एंड मालती शर्मा।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम डॉक्टर एन राजम वायोलिन वादन केळुत्तिरुविरि पक्कवाद्य सहकार तबला साथ पंडित रघुनाथ नाकोड कार्यक्रम मुंदुवरिसुत्ता इन्नीग राग देवगिरी बिलावल.
1: You are listening to violin recital by Dr. N. Rajam. She is accompanied on tabla by Pandit Raghunath Nakod. Continuing the concert, now listen to rag Devgiri Bilawal.

कभी कभी वह बातचीत में काम आता है, कभी किसी मुश्किल फैसले में, और कभी बस यूं ही दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने में। और वैसे भी जिस दिन हमें लगता है कि हमें सब पता है, शायद उसी दिन सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब इस विचार के बाद एक और खूबसूरत नगमा, ये तो बनता ही है।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग नट भैरव में संतूर वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित तरुण भट्टाचार्य। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to the Rag Nat Bhairav on the Santoor. Our artist was Pandit Tarun Bhattacharya. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुंवर राजेंद्र सिंह का स्वरलीन वादन। प्रस्तुत है राग चंद्रकौंस, विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है तथा द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। उन्हें तबले पर संगति कर रहे हैं पंडित मदन मिश्रा। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी नाउ प्रेजेंट स्वरलीन वादन बाय कुंवर राजेंद्र सिंह। ही प्रेजेंट्स राग चंद्रकौंस, विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल। ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा।

ये था राग चंद्रकोस। आप सुन रहे थे कुंवर राजेंद्र सिंह से स्वरलीन वादन। उन्हें तबले पर संगति कर रहे थे पंडित मदन मिश्रा। आइए सुनते हैं पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। प्रस्तुत है राग तुलसी कोस। इसमें आलाप जोड़ झाला तथा धमार ताल में निबद्ध गत प्रस्तुत है। दैट वॉज राग चंद्रकोस। यू आर लिसनिंग टू स्वरलीन रिसाइटल बाय कुंवर राजेंद्र सिंह। ही वॉज अकंपनीड ऑन तबला बाय पंडित मदन मिश्रा। वी प्रेजेंट सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। ही प्रेजेंट्स राग तुलसी कोस इन विच ही प्लेज आलाप जोड़ झाला एंड गत इन धमार ताल।

ये था राग तुलसी कंस। आप सुन रहे थे पंडित कार्तिक कुमार का सुरबहार वादन। उन्हें पखवाज पर संगति कर रहे थे प्रकाश शेजवल। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज राग तुलसी कंस। यू वर लिसनिंग टू सुरबहार रिसाइटल बाय पंडित कार्तिक कुमार। He was accompanied on Pakhwaj by Prakash Shezwar. This was a contribution by All India Radio Mumbai. This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग भैरव. आलाप के बाद आप सुनेंगे विलंबित और द्रुत गति जो कि तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. We now present for you a sarod recital by Mukesh Sharma. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak. Mukesh Sharma first presents Rag Bhairav, in which he will first play alap, followed by drut gat set to teen taal.

0: अभी आप मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग भैरव सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग परमेश्वरी में आलाप, मध्यलय और द्रुतगत की बंदिश, जो कि तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू आर लिस्निंग टू राग भैरव प्लेड ऑन द सरोद बाय मुकेश शर्मा। Concluding his sarod recital, he now presents Rag Parmeshwari, in which you will hear the alap followed by Madhyalay and Rudgat set to Teen Taal.

0: अभी आप मुकेश शर्मा का सरोद पर बजाया राग परमेश्वरी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग परमेश्वरी वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय मुकेश शर्मा। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय विनोद पाठक। दिस प्रोग्राम वाज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित अजय चक्रवर्ती का गायन. सुनिए राग नटभैरव. विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं पिनकधर शंकर. द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं रतन जड़े मोतियों सो. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग वोकल रिसाइटल बाय पंडित अजय चक्रवर्ती. लिसन टू राग नटभैरव. विलंबित बंदिश सेट टू एक ताल. बोल पिनकधर शंकर. द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल. बोल रतन जड़े मोतियों सो.

0: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: आप सुन रहे थे राग नट भैरव। तबले पर संगत कर रहे हैं शुभंकर बैनर्जी, सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान और हारमोनियम पर हैं वासंती महापसेकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए पंडित अजय चक्रवर्ती प्रस्तुत कर रहे हैं राग यमन। विलंबित बंदिश एक ताल में निबद्ध है, बोल हैं सजन गलवा गेंडी डोले। मध्यलय बंदिश झपताल में निबद्ध है, बोल हैं चंद्रमा ललाट पर। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं किनारे किनारे किनारे दरिया।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वाज राग नट भैरव। अकंपनिंग हिम ऑन तबला शुभंकर बैनर्जी, ऑन सारंगी उस्ताद सुल्तान खान एंड ऑन हारमोनियम वासंती महापसेकर। इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोग्राम पंडित अजय चक्रवर्ती प्रेजेंट्स राग यमन। विलंबित बंदिश सेट

एक ताल, बोल सजन गलवा गे अंडी डोले, मध्यलय बंदिश सेट टू झपताल, बोल चंद्रमा ललाट पर, एंड द्रुत बंदिश सेट टू तीन ताल, बोल किनारे किनारे किनारे दरिया।

0: अभी आप सुन रहे थे राग यमन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे पंडित अजय चक्रवर्ती का गायन। तबले पर संगत कर रहे थे शुभंकर बैनर्जी, सारंगी पर उस्ताद सुल्तान खान और हारमोनियम पर वासंती महापसेकर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: यह है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: That was Raag Yaman. With that, we conclude vocal recital of Pandit Ajay Chakravarti. Accompanied him on tabla, Shubhankar Banerjee, on sarangi, Ustad Sultan Khan, and on harmonium, Vasanti Mahapsekar. This was the contribution of AIR, Mumbai.
1: This is Raagam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रूपक ताल में देवेंद्र कांति चक्रवर्ती का तबला वादन. आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं हिरण मोय मित्रा. रूपक ताल में तबला वादन, कलाकार देवेंद्र कांति चक्रवर्ती.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH Anytime Indian Music. This evening, we present first a Hindustani instrumental recital. Listen to a tabla recital in Rupak Tal, performed by Devendra Kanti Chakravorty. Accompanying him on the harmonium is Hiranmoy Mitra. Tabla solo in Rupak Tal.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप रूपक ताल में देवेंद्र कांति चक्रवर्ती का तबला वादन सुन रहे थे। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे हिरणमोई मित्रा। ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आइए अब सुनते हैं तीन ताल में अशोक कुमार मोइत्रा का तबला वादन। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं प्रशांत सिंघो। तीन ताल में तबला वादन, कलाकार अशोक कुमार मोइत्रा।
1: यू आर लिसनिंग टू अ हिंदुस्तानी तबला रिसाइटल इन रूपक ताल। द आर्टिस्ट वॉज देवेंद्र कांति चक्रवर्ती। अकंपनिंग हिम ऑन द हारमोनियम वॉज हिरणमोय मित्र। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट, नाउ लिसन टू अनदर तबला रिसाइटल बाई अशोक कुमार मोइत्र। अशोक कुमार मोइत्र परफॉर्म्स अ तीन ताल। अकंपनिंग हिम ऑन द हारमोनियम इज प्रशांत सिंघो। तबला सोलो इन तीन ताल।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में अशोक कुमार मोइत्रा का तबला वादन सुन रहे थे। आज आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे प्रशांत सिंगो। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 2400 घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू आर लिस्निंग टू अ हिंदुस्तानी तबला रिसाइटल इन तीन ताल by Ashok Kumar Moitro. Accompanying him on the harmonium was Prashant Singho. This program was contributed by All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है रविराज शंकर का बजाया बांसुरी वादन. सबसे पहले आप राग विभास प्रस्तुत करेंगे. मध्य लय बंदिश रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग विभास। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग श्याम कल्याण में एक रचना जो कि रूपक ताल में निबद्ध है। आप साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग श्याम कल्याण। आइए अब सुनते हैं सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया राग माज खमाज में छोटा ख्याल। बोल है आली री मोरा मनहर लीन हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया माझ खमाज में छोटा खेल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में उपशास्त्रीय गायन. कलाकार हैं शांति हीरानंद. आप सुनेंगे ठुमरी तिलक कामोद, बोल हैं बैरन कोयलिया नाबोल. ये रिकॉर्डिंग वर्ष 1982 में की गई थी. This is Ragam 24/7, an exclusive Indian classical music channel. Now listen to Hindustani light classical vocal recital by Shanti Hiranand. The rendition commences with Thumri Tilak Kamod. This was recorded in the year 1982.

अब आप सुनेंगे कजरी पीलू, बोल हैं बरसन लागी सावन बुंदियां। नाउ लिसन टू कजरी पीलू।

अगली प्रस्तुति है भैरवी ठुमरी, बोल हैं मैं तो तोरे दामन वाला गी। द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन इज भैरवी ठुमरी।

आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन, कलाकार हैं शांति हीरानंद। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय शांति हीरानंद। ये है रागम, हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे भैरवी दादरा, बोल हैं चली रे मोर नैया किनारे किनारे। नाउ द आर्टिस्ट रेंडर्स भैरवी दादरा।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी उपशास्त्रीय गायन। कलाकार थी शांति हीरानंद। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू वर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी लाइट क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय शांति हीरानंद। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ में आलाप जोड़ और झाला. विलंबित कत झपताल में और मध्य लय तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने.
2: This is the Ragam Channel of All India Radio. We now present for you a santoor recital presented by Bipul Kumar Roy. He is accompanied on the tabla by Vinod Pathak. Bipul Kumar Roy first presents rag Megh, in which you will hear the alap, jod and jhala. The vilambit gat is set to jhaptal and the mathilai is set to teen tal.

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। और लीजिए अब सुनिए राग मालकौंस। मध्य लय और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर आपकी संगति की है विनोद पाठक ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग मेघ। विपुल कुमार रॉय नेक्स्ट प्रेजेंट्स राग मालकौंस, इन विच यू विल हियर द मध्य लय एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

0: अभी आप विपुल कुमार राय का संतूर पर बजाया राग मालकों सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी विनोद पाठक ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: With Rag Malkons, we come to the end of the Santoor recital presented by Shri Vipul Kumar Roy. He was accompanied on the tabla by Shri Vinod Pathak. This program was a presentation of All India Radio Delhi.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel।
1: श्रोताओ नमस्कार, रागम 24/7 DTH चैनल पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं समर्थ रामदास की भक्ति रचना से, जिसे गाया है कुमुदिनी पेड़नेकर ने।

कुमुदिनी पेडणेकर के स्वर में अभी आपने समर्थ रामदास की भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना आइए सुनते हैं रेखा गोखले के स्वर में। यह भक्ति रचना है सुधांशु की।

सुधांशु ने लिखी भक्ति रचना अभी आपने सुनी रेखा गोखले के स्वर में। भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं इंद्रजीत पवार के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना।

संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी इंद्रजीत पवार के स्वर में। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं जयश्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेळा की भक्ति रचना।

जय श्री कुलकर्णी के स्वर में संत चोखा मेणा की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं संत तुकाराम की भक्ति रचना मधुसूदन कानेटकर के स्वर में।

मधुसूदन कानेटकर के स्वर में संत तुकाराम की भक्ति रचना अभी आपने सुनी। कार्यक्रम में आइए अब संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में सुनते हैं ये भक्ति रचना।

संजीवनी जोशी और सहकारियों के स्वर में अभी आपने ये भक्ति रचना सुनी। आइए अब सुनते हैं मंगला जोशी और ऋषिकेश बोड़स के स्वर में ये भक्ति रचना।

अभी आपने मंगला जोशी और ऋषिकेश बोरस के स्वर में ये भक्ति रचना सुनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं राजस्थानी की भक्ति रचना, जिसे गाया है उषा अत्रे ने।

राजस्थानी की भक्ति रचना अभी आपने सुनी उषा अत्रे के स्वर में। कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना है ब्रह्मानंद महाराज की, जिसे गाया और संगीतबद्ध किया है सुधीर फड़के ने।